ये जरा तेरे काम बंदे स्कूल फीस जाने वाले 80,000 रुपये जैसे लिख सुनेगूंगा दिया नहीं ना तेरे नेगाइब स्कूल फीस जब 80,000 के जैसे लिख से माँ जनों का जो का तिल्ते का तिल्ते था है वहीं कुछ और जगह 50 लिख से कुछ को कितनी आ गए को तू या आ गए सिलगा था 80,000 के जैसे लिख से नगुंगा दिया नहीं आ चुड़े उड़े

0: Because Arab like a tilaga go la lenis kabisa moed.
1: Kuno we go moed anyo. Dello wa gizip kita zero ye.
0: Good to get one, eh? Ega, the one of Giwagin, then a lot of Banagi Legiwagin, Kagadi. Look on your mind, then I can go on my jazz zero. Awake, then I. Taji Femilo. Tubulalia.
2: कहीं ये नहीं बार तो
0: ए
2: तो मैं ना गोरी चीता है क्या गोरे दूसरे वही बारा चाहे ना
0: मैं बात की मैंने ना गुने का कास्ट में अलग आ गुट्टे लॉली अंदर ना हूँ
2: ना अपनी है ना अभी अभी अभी वो ऐ मती ना हूँ ना
0: वो कोला था बुसाना मैं वे
2: Mang
0: and look at Jim Boy, I see him going. Mang and look at Jim Jagger, Jim,
2: and
0: I eat Jim Gosmas. The Bulla, the other dog, Gogasan, the Tugula, the other dog.